विश्वे चस्या करिया पहरा चित्ती वारी माहुआ सूरज कुरत अनेक नानक करते के तिवेश राग पनासी महला पहला गगन में ताल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चबरू करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहां निवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सो सियाणपन लख हो हिता इक न चलै नाल केवल सचिया रा हुई है क्यों कूड़े टुटे पाल हुक्म मरजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्मा मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बार हुक्म न कोए नानक हुक्म जे बुझै ता हो मैं कहै न कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाणै निसण गावै को गुण बढ़ियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथिना वै तोट काथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाहि खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै विप्रवाह साचा साहिब साच नाए भाखिया भाव अपार वाखै मंगहै देह देह दात करे दातार फिरकै अगे रखियै जित दिसै दरबार मुहाव के बोलन बोली है जित सुनतर हिप्यार अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार करमिया वै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचियार थापया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नाद गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुरी सर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाही सब ना जिया का इक दाता सो में विसर ना जाई तीर्थ नहावा जे तुस भावा बिन पाणी के नाए करी जे तीसर ठो पाई वेखा मिन करमा के मिलाए लई मत वचर तन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई।

वह मन बुद्ध मन सकल ब्रह्म की शुद्ध मन मुह चोटा न खाए मन जम कै साथ मन आए ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ प्रगट जाए मन मग्न चल पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मोख द्वार मन परवार सदार मन तराय तारे गुरसिख मन नानक पवे न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंच पावे दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरे ध्यान जे को कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमारता धर्म दया का पूत संतोख था परख्या जिन सू जे को बुझाए होवै सचियार तवलै उपर किता पार धरती होर पराए होर तस्ते भारत लै कवन जोर जी जा तिरंगा के नाल सभना लिखिया बुड़ी कलाम इहो लेखा लिख जाणा कोई लेखा लिखिया किता होए किता तान सवाल हो रूप गेती दात जाने कौन कूद किता बसाओ एको कवाओ तस्ते होए लख दरिया कुदरत कौन कहा विचार वार या न जावा एक वार जो तुद पहवै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपता असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोपक सार असंख मूल लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्खंत घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जा हि जोर असंगड़ वढ़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जा हि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख मलेश मल भाखा हि असंख निंदक सुर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नव संख्था वगम अगम असंख लो संख कह हे सिर भार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तिस सिर नाहि जे फरमाए तिव ते पाहि जेता कीता तेता नाव बिण नावै नाही कोथाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तू पावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार भरियै हथ पैर तन देह पानी धोतै उतरै सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै हो धोए भरियै मत पापां कै संग हो धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कार कर करना लिख ल जा हो आपे भी जापे ही खा नानक हुक्मी आवह जाह तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मल नाओ सगुण तेरे मैं नाही कोई विण कुण कीते भगत न होए स्वस्थात बाणी ब्रह्माव सत सुहाण सदा मनचाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरती माव कवन जित हुआया कार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई किव कराखा किव सलाही किव वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हो वै नानक जे को आपो जाने अगै गया न सो है पाताल पाताल लख आगा सुनगा सूड़ कूट भाल थके वेद कैनक वात सह सुठारे कैनक दे बासलू एक धात लिखा होए तो लिखिए लिखे होए विनाश नानक बडाखिए आपे जाने आप
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਨਿੰਜੇ ਤੁਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣੇ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣੇ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਮ ਤੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵਿਰਲਾ ਹਿਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਜੇਵੜੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਤਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧੇ ਪਾਰ ਕਿਤੇ ਅਗੰਟ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟ ਹੈ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤੇ ਅਦੂਖ ਭੁੱਕ ਸਦ ਮਾਰੇ ਪੇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦੇ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੋਏ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ।

अभूत है, अशूत है, आलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबह है, अगह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनाम्य समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति वैभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वर परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वर परम वृद्धि, नमो शस्त्र पाणि, नमो अस्त्र माणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अभोगी अभोक्ते, नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते, नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साजा, नमो पुपे, नमो दान दाने, नमो मन माने, नमो रोग रोगे, नमो अस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्टेष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधूर दर्दं अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वर प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्त अस्ता मंगतिराजो चाचरी शंदले है थले अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश अपेश भुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमस्त्वं नृनाथे, नमस्त्वं परमाथे, नमस्त्वं गंजे, नमस्त्वं अपंजे, नमस्त्वं अकाले, नमस्त्वं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्पेशे, नमो राजराजे, नमो साहसाजे, नमो साहसाहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोक रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतां, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छन्त्व प्रसाद। अमृत कर्म अमृत धर्म अखल जोगे अचल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व पाने सर्व माने सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व भुगता सर्व देवता सर्व देवम सर्व पेवम सर्व काले।

पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती संतव प्रसाद कहते कि आ छिज दिशा क्या भिज पिशा क्या आगन कर्म है क्या भन परम है क्या भिज लोक है क्या दित सुख है क्या अवधूत भरने के विभूत करने के राज प्रवह धर्म तुझे क्या सुख भरने के सर्वा परने कि जगत कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपाउन रूप है कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह दीन है कि रोजी रे जा कर ही मेरे हक है कि पाक बेऐब है कि गैब लु गैब है कि अहबुल गुना है कि शाहान शाह है कि कारण पुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज क्रीम है कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी एक सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के ब्रह्मंग ही में के आकल अलम है के साहिब कलाम में के हुस्न उल वजू है तमाम लो रुजू है हमेशा सलाम में सली खत्म उदाम में गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बुलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू उल निधान है हरीफ उल अजी मेरे जायक यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवास है गनी मुल के राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुत प्रवाह है सो जुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त उल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकाम मित्र वर्ग मित्र बादी अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भाग्य सुसर्वानुराग है त्रिभुक्त स्वरूप है अशिज है अशूत है कि नरक प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयोगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयोगत अनूप है चाचरी शांत

नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्याग ज्ञाने नमो जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाल।

पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच्छा। राख ले हुम हिराखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब

एकै रूपानुप स्वरूप परंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेर जसे तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंप हुए आजुगा स्वरूप सुयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुई तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सवटारे।

सुनै गुंगजो याहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाउ निक न तिन नरके रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्ट

हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कारू, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोरा। सगल द्वार कौशाड़ के

साहिब जी रूप नरेक नरंग किच त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बिझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न। तू मेरो मेर पर्वत है स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख ली नीहर मेरी। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तै तुम रखन हारे। पावल सागर थाल हते

0: मात पिता सत मीत न पाए
1: मनोहा नाम तेरे संग सहाई
0: जय महा भयान दूत जम दले
1: जय केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होवे अत पारे
1: हर को नाम खिल माहे अधारी
0: अनिक पुनः चरण कर नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जप हो मन मेरे
1: नानक पावो सुख कनेरे
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया
1: हर का नाम जप्त हो सुखिया
0: लाख करोरी बंद न परे
1: हर का नाम जप्त निस्तर
0: अनेक माया रंग तिख न बजावे
1: हर का नाम जप्त अकावे
0: जय मार्ग यो जात अकेला
1: तय हर नाम संग होत सेला
0: ऐसा नाम मन सदा ते आई है
1: नानक गुरमुख परम दर्त पाई है
0: छूटत नहीं कोट लख बाहे
1: नाम जपते पार पराई
0: अनेक बिघन जय आए संग हरे
1: हर का नाम तत्काल उधारे
0: अनेक जोन जन में मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हो मैला मल कबहु न तोवे
1: हर का नाम कोट पाप होवे
0: ऐसा नाम जप हो मन रंग
1: नानक पाइये साध कह संग
0: जय मार के गने जाहे न कोसा
1: हर का नाम हुआ संग तोसा
0: जह पेंडे महा अंध गुवारा
1: हर का नाम संग
0: जह पंथ तेरा को ना सियानु
1: हर का नाम ते नाल प्रशानु
0: जह महा प्यान तपत बहु काम
1: जह हर के नाम की तुम ऊपर शाम
0: जह त्रिखा मन तुझ आकर खे
1: जह नानक हर हर अमृत बर खे
0: भक्त जना के बर्तन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर हर योग साध कमा
0: हर जन के हर नाम निदान
1: पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक है
1: नानक जन के विरत विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
1: हर के नाम जन को तृप्त होत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जप्त का परे न पांग
0: हर का नाम जन की पढ़े आए
1: हर के नाम जन शोभा पाए
0: हर का नाम जन को पूज जोग

0: जन के ओट सताने
1: हर प्रताप जन अवर न जाने
0: ओत ओत जन हर रस राते
1: सुनत समाद नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त पलट नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संकेते करे
0: पार जाते हर को नाम
1: काम देन हर हर गुण गाम
0: सबते उत्तम हर की कथा
1: नाम संत दर दुख कथा
0: नाम की महिमा संत रिद वसे
1: संत प्रताप गुण सब नसे
0: संत का संग बड़ भागी

0: दुष्संगमचे
1: षट्नासो अस्थिर कर माने
0: जो वंशो दूर प्रणे
1: जायते सका साम करे
0: सांग सबाई तिस पर है
1: दाले पतारे तोए
0: गर्तत प्रीत पसंद संग होए
1: कूप में पतित विकराल
0: नान काल रो प्रभ दयाल
1: पशु की मानस मानस जात
0: लोक प्रचार करे दिन रात
1: पेक अंतर मल माया
0: शब्द नहीं कष्ट

मन हर के मन की प्रीत सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई मिथ्या तन

0: प्रसाद शक्ति समर्थ खाहे
1: तिष्ठा कर को रख मन वाहे
0: प्रसाद सुगंध तन लाभ है
1: तिष्ठा सुव्रत परम गत पावे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर
1: तिसे ध्याए सदा मन अंदर
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याए ध्यान रोग
0: प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है
1: तिसे ध्या गत अवर लभावे
0: प्रसाद सुख सेज सोहिज
1: मन आठ पैर तांगा जस गावीज
0: प्रसाद तो सबको मान
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: प्रसाद तिला रहता धर्म
1: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
0: रब जी जपत दरगह मान पाव है
1: नानक पासे ती कर जावे
0: प्रसाद आरो कंचन देही
1: निवला वो तिस राम स्नेही
0: प्रसाद तेरा उल्ला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: तेरे सगल सिदर टाके
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके
0: प्रसाद तुझको ना पहुँचे
1: मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
0: प्रसाद पायु दरहा बंदे हे
1: नानक ताकि भक्त करे
0: प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: मन तिस सिमर को आलस की जय
0: प्रसाद अश्व अष्ट अश्वारी
1: मन तिस प्रभु को कभु ना बिसारी
0: प्रसाद बाख मिलख तना
1: राख खोए प्रभु अपने मना
0: दिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सब तिसे त्याई
0: त्याए जो एक अलख है
1: ईहा हुआ नानक तेरी रखे
0: प्रसाद कहे पुन बहुत दान
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान
0: प्रसाद तू आचार बिहारी
1: तिस प्रभु को सास सास चितारी
0: प्रसाद तेरा उल्लाह रहत
2: सुगे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: जे प्रसाद तेरे सर जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
0: तेरी नीकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: प्रसाद तुन्हे कर्ण नाद
1: जे प्रसाद पेटे बिस्मार
0: प्रसाद भुले अमृत रसना
1: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जे प्रसाद संपूर्ण फल
0: जे प्रसाद परम गत पाव है
1: प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्राप त्याग अवर कत लग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
1: तिस प्रभ को मूल न मनो विसार
0: तेरा प्रताप
1: रे मन मूर्त ता को जाप
0: प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: तिसे जान मन सदा हयुए
0: प्रसाद तू पावे है साच
1: रे मन मेरे तू का सो राज
0: सब की गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सुनाओ
1: आप गवाए सुहर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए परमदास
1: प्रभु दया ते कमल विकास
0: प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
0: हर मन दान प्रभु तेरी मिया
1: आप

0: होवे नह कर्म,
1: इस वैष्णव का निर्मल धर्म,
0: काहू फल की इच्छा नि बाछ,
1: केवल भक्त कीर्तन संग राच,
0: मन तन अंतर स्मरण गोपाल,
1: ऊपर होवत कृपाल,
0: आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे,
1: नानक को वैष्णव परम गत पावे,
0: भगवती भगवंत भगत का रंग,
1: सकल त्याग दुष्ट का संग,
0: मन ते बिनसे सगला परम,
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म,
0: साथ संग पापा मल खोवे,
1: इस भौती की मत उत्तम हो,
0: भगवंत की टहल करे नित नीत,
1: मन तन अर्पे विषण प्रीत,
0: हर के चरण हृदय बसावे,
1: नानक ऐसा भौती भगवंत को पावे,
0: सो पंडित जो मन पर बोध है,
1: राम नाम आलम में सोध है,
0: राम नाम सार रस पीवे,
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे,
0: हर की कथा हृदय बसावे,
1: सो पंडित के जो नावे,
0: वेद प्राण स्मृत बूझे मूल,
1: सुख में जाने स्थूल,
0: चौहान ना को दे उपदेश,
1: नानक सुख

0: सगले ठाऊं
1: जित जित कर रखे तैसा तिन नाऊं
0: आपे कन करावन जोग
1: प्रभावे सोई फन होग
0: पसरो आप होए अनंत रंग।

0: दुखन आर्जा कटे
1: संत के दुखन जमते नहीं सुखे
0: दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन सो बाते हीन
0: संत के हृदय को रखे ना कोए
1: संत के दुखन तान प्रष्ट होए
0: संत बाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक ली तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन काज जो रवे
0: संत के दुखन सर्प जून पाए
1: संत के दुखन त्रिक जून कर माए
0: संत के दुखन तृष्णा में जले है
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन तेज सब जाए
1: संत के दुखन नीच निचाए
0: दुखी का थाओ को नाहे
1: नानक संत पावे ताओ विगत पाए
0: का नंदक महा अतताई
1: संत का निंदक निंदक न पाई
0: संत का नंदक महा हथियारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का नंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखिया दीन
0: नंद को सर्व रोग
1: संत के निंदा को सदा विजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए भोग
0: संत का दुखी सदा अपवित
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को ढांग लागे
1: संत के दुखी को सब त्यागे
0: संत का दुखी महाहंकारी
1: संत का दुखी सदा भिखारी
0: संत का दुखी जन्म है मर है
1: संत की दुख ना सुख ते डरे
0: के दुखी को ना ही ठाओ
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी आज बीते टूटे
1: संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे
0: संत का दुखी का उद्यान परमाइये
1: संत का दुखी उजड़ पाइये
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ कश नाहे
1: आपन बीज आपे ही खाए
0: संत के दुखी को अवर ना राखन हार
1: नानक संत पावे
0: दुखी ओंबेल लाए
1: जो जल बिनु मछली तड़पाए
0: का दुखी भूखा नहीं राजय
1: जो पाप कींदर नहीं त्रापे
0: का दुखी छुटे अकेला
1: जो बुआर तिनके काहे दुहिला
0: का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
0: का दुखी संत का दुखी सदा
2: कीर्त निंदक का तुरही पया
1: नानक ज्योत सुपावे सोई किया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी ना मरे ना जवाइए
0: संत के दुखी की पुजे ना आसा
1: संत का दुखी उचले निराशा
0: दुख ना तरसते कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: कीर्तना मेटे कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कट तिसके ओ करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: तद करो दिन रात
1: तिसे त्यावो सास ग्रास
0: बाते तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को किया
0: अपना खेल आप करने हार
1: दूसरा

0: सदा सदा दिन रहनी।
1: सबते ऊच निर्मल एक करनी,
0: कर कृपा जिसको नाम दिया।
1: नानक सोजन निर्मल किया,
0: जाके मन गुर की प्रतीत।
1: जिसने आवे हर प्रभु चीत,
0: पंत सुनिए तह लोए,
1: जाके हृदय को होए।
0: सच करनी सच ताकी रहत,

0: विस्तार
1: नाना
0: चलत करे खिन माहे
1: पूरे पूर्ण सठाए
0: नाना विधकर बंत बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं
1: जग जग जीवे नानक हर नाऊं
0: नाम के तारे सग

0: तारे पूरी भवन
1: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सुन जन
0: करवाए रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाके बाणी
1: सत पुरख समाए समाणी
0: सत कर्म जाके रचना सत
1: मूल सत सत उत्पात
0: सत करनी निर्मल निर्मले
1: जिसे बुझाए तिसे सब फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाये
1: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जागे जे प्रवेश
0: सत नृत बुझे जे कोए
1: नाम जप ता की कत होए
0: आप सत की या सब सत
1: आपे जाने अपनी मृत
0: जिसकी सृष्ट सुकरने हार
1: भवन भूत कर्त विचार
0: करती की मित न जाने किया
1: नानक जो दिस पावे सो ही किया
0: विस्मन विस्म पे विस्माद।

0: जिसके कर्तव्य थे जात
1: राखे अवर न कोई
0: सर जिया का राखा सोए
1: सोच करे रे प्राणी
0: जग नानक प्रभु लख पढ़ानी
1: बार बार प्रभु जपिए
0: अमृते मंत्र
1: रतन जिन गुरु मुख पाया
0: जिसके शरण नहीं

0: जन तिरप ताने
1: ऊपर
0: पर प्रेम रस रंग
1: उपजे चाओ साध के संग
0: शरण आन सब त्याग
1: अंत

0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: तब भक्त सो को किसे व्यापत
0: जब अपने आप पार ब्रह्म
1: तब वो काज सो होत कारण
0: अपन खेला भरतीजा
1: नानक करने हाल मन दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंधन मुक्त को किसको गनी
0: जब एक है।

0: मिले
1: नानक प्रभा पे मिले
0: साध संग मिल करो आनंद
1: गुण गावो कर परमानंद
0: राम नाम तत करो विचार
1: जनक देखा करो उदार
0: अमृत वचन हर के

0: अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर अनूप
0: सेवा सेवक परवान
1: अंतर्यामी पर प्रधान
0: इस मन बसे सुहोत निहार।